0: करूँ माई
1: हाथ में किया है
0: करूँ माई
1: कहेगी
0: पकड़ूँ पकड़ूँगा माई कहेगी पकड़ूँगा माई।